छु रेडियो नेपाल ख नेपाल भाषीय समाचार जे उपेश पाखेनिना दिशा थौ नेपाल सम्बत चिन्स पिखुद अनलागा द्वितीया प्रतिनिधि सभा बैठके प्रधानमन्त्री बालेन शाह या विचार या विशेष स्पष्ट गर्ने इनाप्या चाहिँ प्रतिपक्षी पङ्ग थनी ढुङ्गा मिग बैठक लिछागुदो नेपाल व भारत सीमा विशेष प्रधानमन्त्री शाह प्रतिनिधि सभा बैठके त्रुटिपूर्ण व तथ्यहीन विचार तगो थाहा चाहिँ प्रतिपक्षी दल या सांसद पिन्स पङ्ग या ना तु चोनी ढुङ्गा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल मिग या निगुगो बैठक न दिगुगो ख ओयाली सभामुख अर्याल कानुन देखेको महत्व जागो थ्या सदन ह्याके त ग्वालिया नीति प्रतिपक्षी सांसद पिन्त दुग्यङ्क इनाप एना दिल सभामुख अर्याल इनाप या सातपि प्रतिपक्षी दल या सांसद पि थथगो कुर्सी दना मदिक पङ्ग थनी ढुङ्गा सभामुख अर्याल बैठक थौतक दिकुको ख थोति प्रतिनिधि सभा या आइतबार या बैठके संसदीय अमर्यादित व्यवहार यापिन सांसद पिन्त छानबिन यागु विशेष समिति निसुङ्गुदो सभामुख डोलप्रसाद अर्याल मिग या बैठके न्यानो दिने प्रतिवेदन तयार यागु कत प्रतिनिधि सभा या छ्यान्जे प्रकाश अधिकारी या कजुते सोम दुजदुगु छगु समिति निसुङ्गु नेतना दिल थोनिहने मिग या नापाङ्गु बैठके प्रतिपक्षी दल या सांसद पिन्स प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आइतबार या बैठके निहन बोयादीको विचार रेकर्ड सिके त इनाप या ना पङ्ग थङ्गु ख बैठके प्रतिपक्षी दल या सांसद पिन्स प्रधानमन्त्री शाह तथ्य दसु व यथार्थे या लिदासा जक नोवा मागो धयादिसे नेपाल भारतीय सीमा कागो दसु दशा निहने निहवे त इनाप याना दिल बैठके नेपाली काङ्ग्रेस या सचेतक निष्कल बाई प्रधानमन्त्री शाह संसद या रोष्ट्रमेदना नौना दिगो विचार त थपिन्छ नोट अफ डिसेन्ट दु धयादिसे नेपाल भारत या गनगन जग्गा मिचे यागु ख उकी या त दुगङ्क निहवे त इनाप याना दिल अथे नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक एन बहादुर मर दे या प्रधानमन्त्री हे नेपाल भारत या भूमि मिचे यागु धका ब्युगु विचार गणन सत्य मजुगुली ओ विचार लित क्या त इनाप याना दिल अथे नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी या प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल दे या प्रधानमन्त्री जिम्मेवार जिमागु इले बहुमत या बल ओ मो अनुभव संसदीय तथ्यहीन व त्रुटिपूर्ण विचार तगु नेतना दिल थोयादथी श्रम संस्कृति पार्टी या प्रमुख सचेतक आरएन राय राष्ट्रिय नाप स्वागु गम्भीर विशेष प्रधानमन्त्री या लिसल गलत नजिर पलिस्ता जुगु धयादिसे विचार लित मकाइगु इले त कपङ्ग एना तु चुनिगु नेता दिल थोयादथी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलीय नेता ज्ञानबहादुर साई प्रधानमन्त्री या विचार तथ्य दसु यथार्थे या लिदासा जी मागु खे बह बिहा दिल प्रतिनिधि सभा या बैठक थौ निनेसिया छता इले चुनिगु गोसादु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपया सभापति रवि लामिछाने न्यानो या भारत भ्रमण या झोले नु दिल्ली थेङ्का दिगुदु भारतीय जनता पार्टी भाजपा या नाय नीति नवीन या बोने नु दिल्ली थेङ्का दिमा सभापति लामिछाने या त इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थले भाजपा या मु छ्यान्जे व विदेश विभाग प्रमुख लस्कु सेनादिको ख भ्रमण या झोले सभापति लामिछाने उच्चस्तरीय राजनीतिक व कूटनीतिक नाप्लाइगु ज्याजो दु सभापति लामिछाने या भ्रमण दले वेक या जहान निकिता पौडेल पार्टी या सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्य विदेश विभाग प्रमुख दीपक बोहरा व स्वकीय छ्यान्जे प्रदीप आचार्य दि संविधान संशोधन बहस पौ तयार या त निसुङ्गु कार्यदल संविधान फिङ्केगु विशेष नागरिक पी पेदो खुस चिन्सुङ्गु सुझाव गु थागुदु कार्यदल या दुज छ्यान्जे लीलाधर सुवेदी चिन हेदो निस सु गुगु इमेल ओ नि न्यादो सोस व हे पेङ्गु सुझाव सामाजिक सञ्जाल वाट्सएप पाखे वगु नेतना दिल कार्यदल संविधान फिङ्केगु झोले फुक्क नेपाली नागरिक

0: क्याबुती देमा दका थते मुङ्कुगु नेतनादिल कार्यकारी राष्ट्रपति संघीयता या नुदा संवैधानिक निकाय या पुनसंरचना व नुदा निर्वाचन प्रणाली या त भिङ्केगु न्यायपालिका या सुधार न्यायाधीश या नियुक्ति जनप्रतिनिधि या योग्यता या विशेष सुझाव ओगु थागु ख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा असार 7, 8 or 9 गते चितवने गोसा गोइगु नापाङ्गु राष्ट्रिय तमुजिया नीति मु गोसा खल निसोङ्गु धागुदु महामन्त्री कविन्द्र बर्लाकुटिया कत पार्टी सभापति रवि लामेचाने या नासी निसोङ्गु मु गोसा खल क तमुजिया त व्यवस्थित समावेशी व सुता लाके त मा कत तयारी यागु धागुदु मु गोसा खलके पार्टी वरिष्ठ नेता पि व केन्द्रीय नेतृत्व या प्रमुख दुज पि दुथ्याका तगुदु समिति डाक्टर स्वर्णिम वागले कविन्द्र बुर्लाकुटी भूपदेव शाह विपिन कुमार आचार्य लिमा अधिकारी चुनादिगुदु अथे नेता पि बसुमा तामाङ मनिष चा विराज भक्त श्रेष्ठ दीपक राज बोहरा गणेश पराजुली सोभिता गौतम शिशिर खनाल हरि ढकाल सरिता गेवाली व सागर ढकाल दुज कथ चुनादिगुदु सभामुख डोल प्रसाद डिपी अर्याल हलिन्याङ्क उनाचोपी सक्ल नेपामी पिन्त विस्क कथ क घामा धैदिगुदु नेपाली मूल या नागरिक छाता संस्था एसोसिएसन अफ नेपाली ओरिजिन एएनओ या प्रतिनिधिमण्डल नापम हिक सिंह दरबारे थगो कार्यकक्षे नाप्ला दिसे सभामुख अर्याल नेपाली मूल्य मनुतेत लुएक कानुन देका क घामा धैदिगु ख नाप्लागु झोले एएनओ या नुकु एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील कुमार पन्त नेपा नाप सांस्कृतिक रूपमा स्वयमा धका नेतनादिल विशेष अदालत पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महर्या त छगु लाख धरोटी कया तोटे त उज बिगुदु न्यायाधीश पि सुदर्शन देव भट्ट व विदुर कोइराला इजलास महर्या त धरोटी तोटे त उज बिगु ख महर्या त लु तस्करी या मुद्दा दार्जुको ख वेक या त तारन्ता थोय मुद्दा आफ्नो धरोटी तोटिगु सपाई बिगु एना चुङ्गुदु दरबार हत्याकाण्ड जुगु नि न्याद पुङ्गुदु 19 जेठ 2058 साले नारायणी राजदरबार दुनि जुजु वीरेन्द्र शाह या वंशनाश जुगु ख निथ या बोहनी या भोजे जुजु वीरेन्द्र नाप रानी ऐश्वर्य युवराज दिपेन्द्र निराजन राजकुमारी श्रुति राजकुमार धीरेन्द्र राजकुमारी जयन्ती राजकुमारी शान्ति राजकुमारी शारदा कुमार खड्का नाप राजपरिवार या मेपी दुजपिन्त गोली केका सेना बिगु ख उच्चस्तरीय छानबिन समिति थो छाक्या युवराज दिपेन्द्र सक्लेत गोली केका स्याढुङ्का थन थमेसित गोली केका स्यागु धका प्रतिवेदन नेतना तगुदु वास्तविक सुजुगो ख सुना स्यागु ख उकिया ल्युने रहस्य चुख धका आतक सी मधुनी उकी थो झाक्या त हाक्न दुवालीमा धका स थोया चुङ्गुदु प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसन पाखे थिति देशे वना शान्ति पलिस्ता जुगु नितनादिगुदु संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सैनिक अन्तर्राष्ट्रिय दिवस या लसता काभ्रे या 5 खाले दुगु वीरेन्द्र शान्ति काडे तालिम केन्द्रे मिग जुगु ज्याजोसँग वेक्ल संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बडापत्रे या लिदस्या नेपाली सेना हलिन्याङ्क शान्ति पलिस्ता यागु नितनादिल हलिन्याङ्क थते ज्या या त नेपाली सेना या त मा कथा ग्वाली व भलसा ब्युगुली संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विश्व समुदाय रक्षा तथा परराष्ट्र मन्त्रालय नाप पुक्कसित ओ एक्ल शुभया देशना दिल संयुक्त राष्ट्रसङ्घ इनापे सन् 1958 निसे सैनिक शान्ति सैनिक छोगु थलखे नेपादकले चुए लागुन ओ एक्ल कना दिल नेवा राष्ट्रिय पत्रकार दबुया गोर्खा जिल्ला त मुजा कोचागुदु हिरालाल श्रेष्ठ नायक कथ दुगु गोर्खा जिल्ला हेम दुज समिति निसोङ्गु ख समिति नुकु कथ आत्मराम श्रेष्ठ स्याङ्जे कथ विनोद बाबु श्रेष्ठ दाँबरी लक्ष्मी श्रेष्ठ त्यागु ख अथे दुज कथ मनोज श्रेष्ठ राजकुमार श्रेष्ठ व लक्ष्मी श्रेष्ठ त्यानादिगु ख गण्डकी प्रदेश पार्षदे प्रतिनिधि कत अञ्जन श्रेष्ठ त्यागु धका नेवा राष्ट्रिय पत्रकार दबु या केन्द्रीय नायो नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठ दाइदिको ख ए महानगरपालिका छात्रवृत्ति लिएको परीक्षा पाके चिन्पेदो निन हेम विद्यार्थी पास जुगुदो महानगरपालिका आइतबार गोसा गोगु छात्रवृत्ति लिएको जाँचे थोल्याके पास जुगु ख थो छात्रवृत्ति महानगरपालिका कथ सञ्चालन जुयाचङ्गु संस्थाको शिक्षण संस्था शैक्षिक सत्र 2083-84 झिन्छगु झिन्गु तगी या अध्ययन नीति महानगरपालिका यतना तगुदु डलिल डुरा या परशुराम नगरपालिका पाँच पाकी वङ्गु सुकुरा निसे तना चोपी सशस्त्र प्रहरी बल या जवान ओम प्रकाश पुन मगर व स्थानीय तीर्थबहादुर थापा मगर छिनाचुङ अवस्था मिगलु या वगुदु जिल्ला प्रहरी ज्याकु या प्रमुख वरुण बहादुर सिंह या कथ नेकुद या थापा या सिम परशुराम नगरपालिका पाँच अन्तर्गत महाकाली खुसिया कल्पठे लागा लुया वगु ख अथे सशस्त्र प्रहरी बल या बोर्डर आउटपोस्ट बिओपी परि गाउँ ज्याइना चुनादीमा जवान पुन मगर या सीम कञ्चनपुर या ब्रह्मदेव या महाकाली खुसी सिधे लुयाओ घ पाजु वा भिन्चा निम विपत्ता जुई ढुङ्गा महाकाली खुसी सिधे उमिसँग छेलेगु ट्युब लुयाओ गु ख उकिया हे लिदेश खुसी चुका इङ्कुगु जिफु धका मालिगु झोले सीम लुयाओ गु ख लेबनान व इजरायल दोथि आक्रमण मयागु सहमति जुगुदु अमेरिकी मध्यस्थता जुगु थ सहमति या त लडाकु पुच हिजबुल्ला न स्वीकार यागुदु अमेरिका या लेबनानी दूतावास हिजबुल्ला आक्रमण दिकेगु अमेरिकी प्रस्ताव स्वीकार यागु पुष्टि यागु ख प्रस्ताव कथ लेबनान या राजधानी बेरुत या दक्षिणी लागा जुइगु इजरायली आक्रमण दिल धासा हिजबुल्ला न इजरायलले आक्रमण दिकी छसिको त थो सहमति फुक्क लेबनानी लाग्या त ब्याइको योजना दुगु दूतावास धागुदु इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु न सहमति पुष्टि जना दिसे हिजबुल्ला इजरायली आक्रमण मदिकुसा विरोधी हाक्न आक्रमण यागु ख्याचो बिगुदो थोयदोते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतन्याहु हिजबुल्ला या प्रतिनिधि नाप सल जुगु व निगुली पक्ष आक्रमण मयागु सहमति यागु यतना दिगु ख थौ दे या हिमाली व पहाडी लाग्या मोथासे वो लुम्बिनी व सुदूरपश्चिम प्रदेश या तराई लाग्या छगुनीको थासे वावैगु दुक्मा यागुदु मधेश व कोशी प्रदेश या तराई लाग्या तानोइगु दुक्मा यागुदु थौ सोनिगले निगुगु निसे सुई छगु डिग्री सेल्सियस या क्वाज लुइगु दुक्मा यागुदु नेपाल भाषे बुखको जाला शुभ
1: संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको निवृत्त जीवनलाई सुरक्षित बनाउन नागरिक लगानी कोषले सञ्चालन गरेको योगदान वा गैर योगदानमा आधारित उपदान तथा पेन्सन योजनामा सहभागी हौ। दीर्घकालीन दायित्वलाई व्यवस्थापन गरौ।
2: नागरिक लगानी कोष

यी रेडियो नेपाल हो। अब सरस्वती राई दनवारकबाट दनवारी भाषा संचार सुन। सरकारी जैल भदौ 23 तसु 24 गते आन्दोलन माखला घटना जाँचबुझ कार्यालय गठन कर्ला।

0: तराई भागमा मुख्य रूपमा मौसम सफा रहलार महाशाखै जनारेली। आजुलाई दनवारी भाषा समाचार सिद्धि लेख हस्त शिवा ढोकरिनु।
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल,
2: राष्ट्रिय रेडियो, राष्ट्रको संचार।

दि रेडियो नेपालीन आङ श्रृङ्गलामा शेर्पाने सिरिकेकी साङ्ग्युर सेन्रोनाङ सुङकी गलुबदौलाकी गतेङिसु सुमताङ इसुजीकी सेर्मो चुङ्गु पुङ्गोकुलकी कोर्ला ङ्याम्सिप कितुप्ला जो सक्पी जोकु प्रतिवेदनला वोतुप तम्ङ्यतुई कोर्ला लोपजुङ कितुप्ला जो सक्पी कार्यविधि निमा सिप्चु स्याङा पोरुप थाकचोत क्यानुवाए लन्सकी आरिङदेउ सक्दुकी क्याउ थाकचोत सार्वजनिक कितुप्रीमाला सुङकी सुङसेपा सस्मित पोखरेलकी ससिङ कले मेता जोप्ला जो सक्पी चिखेप्ला बलभद्र बास्तोला कार्कीला कसेक्याउ सुङवाए तुग्राङ क्याने सोक्मितीवाला अमिर प्रसाद नेउपाने पद्मिनी सोती तङ डाक्टर रेहाना श्रेष्ठला कसेक्याउ सेनवाए तुग्राङ क्याने सुङकी न्याम्रुल ग्यालखाप सोक्पी खोरयुक ल्यारिम्तेमा ओजोन तहला क्युन गेकु गिन्छेन तिवा टडी कितुप ताङ न्युमो जप्ला मोटेरल प्रोटोकल कि लगलेन कोर कि थुन्लाम स्वीकृत कितुप थाक्चुत क्यानुवाए छक्दुकी सशस्त्र मक्मिकी डिआइजी अञ्जनी कुमार पोखरेल्ला सशस्त्र मक्मिकी एआइजिपी कि कोसाला कोसा पुरूप थाक्चुत क्याउ सेनुवाए राष्ट्रिय सभाकी छोक्मितुई जपेम्बी छेर्मु प्रतिनिधि सभाला सिलोन बालेन्द्र शाहकी यम्बु ताङ्ग्याकरपर्की सन्समकी कोर्ला जकु सुङलप कोर्ला सिलोनकी सलु माझोसेक्ला सक्दु जिन्क्योङकी माचिसिमा हारिङ सक्दु क्युणजाङ वाए सक्दु गोसुलुङमे छोक्मितुई यम्बी साङ्ग्याकरकी ससिङला नोक्योन वाए सिन सिलोनकी जकु सुङलप ग्यालखापकी सेतोङकी खप्तेला ओतुप सुङिन सिलोनकी थोला सुगोला सुगेप नाङसुङ सक्दुला नेपाली काङ्ग्रेसकी छोक्मी पदम बहादुर परियार नेकपा एमालेकी छोक्मी रोशनी मेचे नेपाली कम्युनिस्ट सोकी छोक्मी घनश्याम रिजाल ताङ राष्ट्रिय जनमोर्चाकी छोक्मी तुलप्रसाद विश्वकर्माकी सिलोन बालेन्द्र शाहकी टोसोकला फेम्ने थोला सुगो सुङवाए राष्ट्रिय सभाकी याम्बा सक्दु सला जेठलाकी गतेङिसुकी सेर्मु सुजो चिङी ताङ कमा च्याङला देतुप गनुवाए ग्याकरकी भारतीय जनता पार्टीकी देन्छाङला ग्याकर जिकोरला जुन ओतुप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी छोक्सो रवि लामिछानेकी हारिङ बाजापाकी चिख्याप नितिन नवीन ताङ थोरिम गोठित त्योताङ क्यान थुक्ठेत कितुप सेनवाए नयाँ दिल्लीला ओतुप बाजापाकी ल्याखुङला कितुप थुक्टेतला टङरा ग्यालखापङिकी माङसोकी सुक सोकी न्याम्युङ सप्सित चिगडिल ताङ तम्जिल्ला ग्यासा जब कोर्ला टोङ्गु कितुप रासोपाकी सुङसेपा मनिष जाकी खेन्तोक नाङ्गुपिन छोक्सो लामी छाने गोठितकी कुसप्तुई सोकपाला निकिता पौडेल रासोपाकी छाक्रोक महामन्त्री ताङ प्रतिनिधि सभा छोक्मी दीपक बोहरा ताङ गेर्की टुङ्गिक प्रदीप आचार्य ओतुप सेनवाए ठिम्पोन छेन्पो डाक्टर मनोज कुमार शर्माकी ठिमखाङ छोक्ला मेमाङतुई इच्छे पुरूपला लाकी छर्सी जोने लाका गोजुदुप खेलेन्क्या नाङवाए संवैधानिक तेजी न्यायिक पत्रकार मन्सकी सम्भ कश्यक चुङ्गुप कुसप्तिवताङ क्यान आरिङ चुङ्गुप थुक्ठेतला ठिम्पोन छेन्पो डाक्टर शर्माकी मिमाङतुई इच्छे किथोपु क्याने ठिमखाङ तिओ यर्ग्या तोङ्गुप सुङसुङ थुक्ठेतकी रिम्बाला ठिम्पोन छेन्पो डाक्टर शर्माकी ठिमखाङ तिओ यर्ग्या तोङ्गुपला ठिम्पोन तिओला ल्यागेन तेन्तेन क्यानेरङ लाका गोजुदुप छर्सी ओतुप खेन्तोक नाङसुङ यम्बुने छिगेल्ला नम्रुजिनक्योङकी वाउ हिमालय एयरलाइन्सकी काठमाडौँ ने ज्ञानकी सेन्जेनला नम्रुजिनक्योङकी तुप गनवाए एयरलाइन्सकी दिजेटलाकी गतेङिसु चिकी छेर्मुने जुन काठमाडौँ सेन्जेन काठमाडौँ नम्रुजिनक्योङकी तुप घोषणा क्याउइन् नम्रु सेवा दुन्ठकला निमाङी काठमाडौँकी त्रिभुवन जम्बुलिङ नम्रुथाङ दङ ज्ञानकी सेन्जेन बाओ आन जम्बुलिङ नम्रुथाङ पर्ला कितुप गनवाए राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रकी ग्यालखप नङ्गी सार्वजनिक प्रशासनला फेन्सन पोजोबला हुर्ता क्याने लाका कि ओतुप सेनवाए सार्वजनिक सोकपातेवाला उङ्गुप क्योपो लोकपो निमो जब तन्दोकला ङ्याम्सिप कितुप लाका सोक्पी हुर्ता क्याने कि ओतुप सेनवाए निमा चेकला ग्यालखप नङ्गी सुङकी सोकपातेवा च्याङाने जुन निसु चिकला ङ्याम्सिप कि वाउ सुङसेपा बट्टकी सुङसुङ ङ्याम्सिप सोक्पी ल्याचेतपातुई हाजिरी अनुशासन मन्जा ताङ लाकी ल्याखुङला देउ मादेउ कोर्ला थोदुई वाउ सेनवाए तन्दातिङ छुजो निसु जी नाङला ट्राफिक कोर्सुङ मकमिकी गाडी तोङ्गुप मि मेरा तोङि तङ गुप्चुगुवा सुमला ठिम तङ वाए तितियामा सुङला ट्याङ्गा बुम निसु दिन तोङ सुम्चु सुवा टुक तङ सैङा ग्याठाल दु सेन वाए काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक कोर्सुङ मकमी ल्याखुङकी सेतुप नङसिन छाङ आरक थुने गाडी तोङ्गुप ठिमकी खप्तेला राइड सेयरिङ एप थोकुतिव ट्राफिक ट्याक तङ ठिम मिच्युतिव तङ गाडी स्पिडला तोङ्गुप तिवला ठिम तङ्गुपिन दुग्राङ क्याने ट्राफिक लेन मिच्यु खाङ थेप हर्न तोङ्गुप लाम्ला काङ थेप गाडी ताङ बाइक त्यो पार्क कितुप्ती होला ताङ ठिम ताङ्गुप सेनवाए
ठिमकी खप्तेला क्रिप्टो करेन्सी जगु तङ डिजिटल माध्यम तेमा क्यपोलोपो क्याउ क्योनला कोर्सुङ मङ्पिकी लोङी सुगुकी डाक्टर पप्पु कुमार यादवला अमेरिकी ट्याङ्गा तोङ सुम्ची सुवा डुक्ताङ क्यान मोबाइल थान चुपदिन ताङ क्यान जिम्बु सेनवाय डाक्टर यादवकी कोर्ला न्याम्सिप कि तुब्रिम्बाला खोङकी ठिमकी खप्तेला क्रिप्टो करेन्सी कि नेटवर्क जिन्क्योङ कि वा उङ्यौ कोर्सुङ मङ्पिकी सेतुबिन न्याम्सिप कि रिम्बाला डाक्टर यादवकी मोबाइल तङ कम्प्युटर तेमा वाइनान्स तङ बाइबिट धोके एप तियो थोने क्रिप्टो करेन्सी कि लाका कि वा उङ्यन वाय भरतपुर कि म्यानखाङला लाका कि वा तुप डाक्टर यादव कि मितुइ लाने ट्याङ्गा चो लाउ इन सिरुप कोर्ला कोर्सुङ मङ्पिकी न्याम्सिप कि वा तुप डिएसपी चन्द्रभूषण यादव कि ख्यान्तोक नागुभिन वीरगंज महानगरपालिकाकी सो राजेशमान सिंहला आरिङ जिम्बु पर्सा जोङकी कोर्सुङ मक्मी ल्याकुङकी सेनु

मैं तन्हाई में रब की मोहब्बत। कभी कभी रब्बुल आलमीन हमें सबसे दूर कर देता है ताकि हम सिर्फ उसी के करीब हो जाएं। जब कोई साथ न हो, जब हर तरफ खामोशी छा जाए और हम तन्हा हो जाएं, तो हम समझें कि ये रब का अपने पास बुलाना है, क्योंकि तन्हाई वो जगह है जहाँ दिल सबसे सच्चा होता है और रब सबसे ज़्यादा करीब। हम ऐसे वक्त में उसे पुकारें आहिस्ता आहिस्ता, बगैर किसी शिकायत के, वो हमारी तन्हाई को इबादत में बदल देगा, जो अंधेरे दिलों को भी चमका देती है। हमें जो भी आजमाइश पेश आती है, वो हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि रब करीम के करीब करने के लिए होती है। जब ज़िंदगी बोझल लगे और दिल थका हुआ हो, तो याद रखें, हमारे रब हमारे लिए कुछ खूबसूरत चीज़ तैयार कर रहा होता है। रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब इलाही में वादा फरमाया है कि वो तंगी के बाद आसानी पैदा करेगा, लिहाजा हम सब्र करें, दुआ करते रहें और उन पर भरोसा रखें, क्योंकि हर रात के बाद एक रोशन सुबह ज़रूर आती है। सामीन, इन अहम बातों के बाद अब गज़ल की बारी है। मुन्नी बेगम की आवाज़ में एक बार मुस्कुरा दो, अफसानाए चमन का उनवान ही बदल दो, फूलों का सर कुचल दो, गलियों का दिल मसल दो। समाप्त फरमाएं।

लसो फ्याफुल तिनी मन्जुश्री सम्मत 2862 तालु डुवाफ्रेलाला छेपा चुइसेङिस विक्रम सम्मत 2083 साल जेठलाला चुइसेकु मेरे मङ्गलबार चु रेडियो नेपाल हिन्न तामाङ साङ्गुरी रङ्ग डेनमुला सूर्य मोक्तान सरकार से निब भदौलालाई घिचुइसे सोमथेन घिचुइसे ब्लिकुनु ब्युन गजे से सेङ्बा आन्दोलनलाई जाँचबुझ लाबारी सभा आयोग से पेस लबा प्रतिवेदन अनुसार सुरक्षा संयन्त्रलाई अध्ययन लाबारी सभा अध्ययन समितिलाई गे दुई ब्लिचुइसेङारे काप्पा निर्णय लाबुमला ब्लोन सेङजाङलाई तिनी टिपछि साङ्सी लाबा निर्णय गर्दै सार्वजनिकलाई सुबान सरकारलाई सुङ्गुन स्यार्थेन क्लाङमा ब्लोन सस्मित पोखरेल से सानाम थुम्ला समस्या द छाङ्ने लाबा सहमति समितिला चोहरी बलभद्र बास्तोलादा नियुक्ति लाभा निर्णय लाभ मुला विषय संक्षेप हिन्न समितिलाई मुल्मिका देरी अमीर प्रसाद न्योपाने पद्मिनी सोती थिएन डाक्टर रोहना श्रेष्ठदा नियुक्ति लाभ मुला 1979 सरकार से संयुक्त राष्ट्र सङ्घ वातावरणीय गे खोर्दा कार्यान्वयन लाभ सम्बन्धी सम्झौता त स्वीकृत लाभानुन निर्णय लाभ मुला सिसाङसे सशस्त्र प्रहरी डिआइजी अञ्जनी कुमार पोखरेलदा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त आइजिपी बडुवाला निर्णय लाबुमला प्रतिपक्षी दलगत से विरोध लसिन टिपा लिच्छा प्रतिनिधि सभालाई चिसाङ चुनु जेठलाडा घिचुइसे गा कुनु दोनादा स्थगित लाबुमला प्रतिनिधि सभालाई चिसाङ टिपालाई पाइनन् तिनी प्रतिपक्षी दललाई सांसद गर्दैछे काइप्लोन बालेन्द्र साहसै नेपाल से भारतलाई मुर्नाङमा विषय सुङ्बा लिङ्गोदा सचेप लाबारी माग्लासी विरोध लाबुमबा चिसाङ्री सुङ्गुन डोलप्रसाद अरियाल चाहिँ संसद लचुपीमा गाचला चिसाङ थिएन अनौपचारिक काठुएका देरी नुन विपक्षी दललाई ताम खासिजिरमा चाहिँ थे ताम्रे राङ्ला ध्यान छेङसिजिरमा मला विषय सुङसुबान चिसाङ सेङबारी रोला सेपिनबारी मोइजेनला सुबोबा चिसाङरी विपक्षी दललाई सांसद गर्दै चाहिँ विरोध लसिन्टीमा दुईरी सुङबोन डोलप्रसाद अरियाल चाहिँ ग्रेन प्रतिपक्षी दललाई गोबन भीष्मराज आङदेम्बे दा राङ्ला तामथानबारी दुई पिन्चाइनुन दुई आकिनमाले छ विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी हिल्चोहो से पुइगाबा पत्र ढोसी चिसाङ स्थगित लाभ हिन्न 1979 राष्ट्रिय सभालाई सांसद गर्दै चाहिँ दिनीरे आइतबार कुनु प्रतिनिधि सभालाई चिसाङरी काइब्लोन बालेन्द्र साहसे भारत थेनला ब्रेलबाला फेरि सुङमा ताम चिसाङलाई गे थिएन कारवाही सेङबारे आपिनमा अडान किनमाले छ तिनीलाई चिसाङ स्थगित लाबुमला चिसाङ तीबेला पाएनुन आकस्मिक दुईरी ताम लाबा सांसद गर्दैछे नेपाल सेनुन लामन ग्लारी भारतलाई सान्नाङमा मुला विषय युल्ला कार्यकारी ग्रिन पोसे संसदलाई रोस्ट्रमरी राप्सी ताम लाबा विभाग कुटनीतिक मर्यादा नाङ सिपाङ बसे यो नम्बेमा योना सदन दिखासी युल्बाला मिन्डी माफी रिदोबा ताम्रे बाङपिन बमुबा चिसाङले नेपाली काङ्ग्रेसलाई सांसद पद्म बहादुर परिया नेकपा एमालेलाई सांसद रोशनी मेचे नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई सांसद घनश्याम रिजाल राष्ट्रिय जनमोर्चालाई सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्मा से काइबन बालेन्द्र साहसे सदन देखासे युलबाला मिन्ने माफी रिदोला विषय सुन्दा हिन्न राष्ट्रिय सभालाई अर्को चिसाङ नाङ्गर दिनेरी टिसेला तापमुला ग्रिन थिम्पोन सिटपो डाक्टर मनोज कुमार शर्मा से ठिमखाङदा हिल्बासे विश्वास लबारी खाम्बा सुबारी गे योजना सोचे गेलासेलामला विषय संक्षेपमला संवैधानिक थिएन न्यायिक पत्रकार मञ्चला छाडदाम्बा दाम पोखादी थिएन तिनी लिङ्गमुला सिमान ग्रिन थिम्पोन सिटपो डाक्टर शर्मा से हिल्बासे प्रत्यक्ष माङबारी खाम्बाला लासे ठिमखाङदा ज्यापा सुबारी राङसे बाङ्लाबनमुला विषय संक्षेप हिन्न ग्रिन थिम्पोन सिटपो डाक्टर शर्मा से राङसे ताम्पाङसे विमानन गेलासे न्याय थुम्रे गेलाबारी तीबमुला विषय संक्षेपान ठिमखाङ सुधार प्रक्रियारी ग्रेन ठिमखाङलाई ठिनपोन कदेता घा तोक लासिन जिम्मेवारी पिनमारी राङसे योजना शोभन मुला विषय सुङसु बमला 1994 लासी ग्रेन ठिमपोन छिटपो डाक्टर शर्मासे न्याय थुम्ला गरिमा थेन छविदा नोभ सोसिन थानमारी पत्रकारिता थुम्ला नुन लामन ग्रेन भूमिका तबसे सञ्चार माध्यमसे ज्याबा थेन सुधार लादोबा सुझाव गदे पिनमारी मैजेन लासी बमला भारतीय जनता पार्टी भाजपालाई न्युई साङ्री भारत कुर्मान मोबा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चोहो रवि लामी छानेसे तिनी भाजपालाई चोहो नितिन नवीनलाई छ्याम्रे ग्रेन ग्रेन तान पकाएदी थिएन ग्लेटुन ग्लेटेम काठोइला सला तापमुला छाडदेलेरी भाजपालाई ग्रेन खाङ्री रूपतामा गोर्गी ह्युल्ला लोकतान्त्रिक बाङ दलगत अनुभव ग्लेटिम थेन गोर्गी ह्युल्ला ब्रेलबदा ज्यापसुबारी खाम्बा ताम्रे काठोइला सेलामला विषय राष्ट्रपाला सुङबन मनिष जासे सुङसुबा हिन्ना
वीरगंज महानगरपालिकालाई ग्रेडपो राजेशमान सिंह दा प्रहरी सिचुङसी धरोटिरी खला बोमला पर्सा जोङला ठिमकाङसे लिखत सम्बन्धीलाई कसुरी पक्राउ पुर्जी जारी लाबाला चुइरेली छतिनी पर्सालाई ठोरिरी लासी टिबा अवस्थारी प्रहरी से चुङबा मोबा नगर ग्रेडपो सिंहसे स्यान मिला जामेदा नक्कली या इक्ला सिकेवाला दर्तलाबा नागरिकता थिन पासपोर्ट सोसेपिनमा लिखत सम्बन्धीलाई कसुर लाबा आरोप लागबला बोमला चुरानुलासी हिल्ला ठिम दनाङसे क्रिप्टो करेन्सी लछुङ थेन डिजिटल माध्यम ग्याम ठगिलाबाला अभियोगरी प्रहरी से निचुई से कुदिङला डाक्टर पप्पु कुमार यादव दा तोङ सोम्ची अमेरिकी डलर थेन चुई से निस मोबाइललाई छ्याम्री प्रहरी से चुङ बमोला जुन प्रहरी गेदिम चितवनलाई अनुसार डाक्टर यादव भरतपुर महानगरपालिका चुई चित्रसेन टोली कोठा भाडा रिकिन्सी टिपन खाप मोबा धनुषा जोङला हंसपुर नगरपालिका ब्लेलर डाक्टर यादवलाई फेरि अनुसन्धानलाई बताङ्ग्री रोसे क्रिप्टो करेन्सीलाई नेटवर्क सेङ्गमान खाप स्याप्प मोला बेसी प्रहरी से पाङबमोला मनसुन घ्याम तबरी खाममा विपद से काप्रे पलाञ्चोक जोङला गोर्चुई से सोम स्थानीय तहला ग्यार्जब्ली से गोर्निश्चुई कुग्ला लामन ग्रेन जोखिमरी मोला बेसी पाङबा मोला जोङ स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति लचिसाङसे जोखिमरी मोबा ग्लागदे सार्वजनिक लाबन रो ग्रेन जोङ अधिकारी भोलानाथ गुरा गाईसे ग्यार्जब्ली से गोर्निश्चुई कुग्ला लामन ग्रेन जोखिमरी मोबा ग्यार्जगिक से गोर कुची नि ग्ला सुरक्षित थेन गोर भ्रेचुई से गिक ग्ला उद्धार लबरी हेलिप्याड व्यवस्था ग्रेन्जोङ अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारी से लामन जोखिमले मोबा ग्लाग्याम से दान्दे स्यान ग्लारी लेबरे आखम्बा थेन गोर चुई से सोमनुन स्थानीय तह भाल थेन ढुइला ग्रेन जोखिमले मोला विषय सुङसिप मोला काभ्रे जोङला बेथानचोक गाउँपालिका चौरी दौराली गाउँपालिका धुलीखेल नगर पनेपा नगर नवबुद्ध फाँसखाल पनौती मण्डन देवपुर नगर थेन तेमाल गाउँपालिका रोसी गाउँपालिका भुम्लो गाउँपालिका थेन खाने खोला गाउँपालिका रे विपद ग्याम जोखिम तबरी खामला बेसी पाङबा मोला चुरानुलासी सार्वजनिक घारी सुर्ती ग्याम सुभाष से घे चुङमारी थेन थुङमारी आपिन्ना काबारी काभ्रे पलाञ्चोक जोङ प्रशासन से बेनान स्थानीय तहदा निर्देशन पिन्बा मोला स्थानीय जनप्रतिनिधि गदेसे बोकिनमा जोङ स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति लचिसाङ्रे नेपाल सरकारलाई ठिम्दा कुङ्ना लसी लागुला बरे जोङ प्रशासन से निर्देशन पिनमा हिन्ना चुनन साङ्गुर गदेला छ्याम्री तिनी त तामाङ साङ्गुर जिन्जी रेडियो नेपाल ज्ञानमा लस्युगो लसो फ्याफुल्ला।

0: ई रेडियो नेपाल ठिक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। सरकार बीतल भादव 23 आ 24 गते के प्रदर्शन के क्रम में भेल घटना के जांच बुझ करबाक लेल गठित आयोग पेश कयल प्रतिवेदन में उल्लेखित सुरक्षा संयंत्रक हक में अध्ययन करबाक लेल सिफारिश करबाक हेतु गठित अध्ययन समिति के कार्यविधि 45 दिन ठप करबाक निर्णय कयलक अछि। मंत्री परिषदक आजुक बैठक ई निर्णय कयल। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री तथा सरकारक प्रवक्ता सस्मित पोखरेल जानकारी देलनि। बैठक भूमि समस्या समाधान समिति के अध्यक्ष में बलभद्र बास्थोला काशी के नियुक्त करबाक निर्णय कयलक अछि। समितिक समस्या सभ में हरिमीर प्रसाद नेउपाने काठमांडू, पद्मिनी सोती लमजुंग आ डॉक्टर रेहना श्रेष्ठ काठमांडू नियुक्त कयल जनाओल गेल अछि। सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ वातावरणीय कार्यक्रम UNDP सँ ओजन तह के हानि पहुँचबाक पदार्थक व्यवस्थापन नवीनीकरण संबंधी मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन संबंधी समझौता स्वीकृत करबाक सेहो निर्णय कयलक अछि। बैठक सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अंजनी कुमार पोखरेल के सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पद में पदोन्नति करबाक निर्णय कयलक अछि। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपाक सभापति रवि लामेछाने आ भारतीय जनता पार्टी भाजपाक राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बीच राजनीति में जेंडर पुस्ताक बढ़त गेल भूमिका आ संभावना संबंध में छलफल भेल अछि। भाजपा मुख्यालय में आय हुनका लोकनिक बीच भेल भेंटवार्ता में विशेषकर लोकतांत्रिक सहभागिता, सार्वजनिक बहस तथा भावी नेतृत्व निर्माण में युवा पुस्ता द्वारा खेलल जा सकबाक भूमिका ऊपर विचार आदान प्रदान भेल भाजपा जनौलक अछि। भारत भ्रमण में रहल सभापति लामेछाने नेतृत्वक प्रतिनिधिमंडल आई नया दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी भाजपा मुख्यालय में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन सहित वरिष्ठ नेता गण सब संग भेंटवार्ता कयलनि। प्रतिनिधि सबके स्वागत करैत अध्यक्ष नवीन साझा संस्था सभ्यतागत विरासत सांस्कृतिक संबंध तथा जनस्तर के सुदृढ़ संबंध में आधारित भारत नेपाल बीचक घनिष्ठ आ ऐतिहासिक संबंध संबंध में प्रकाश देने छलथि। ओ एहन अंतरक्रिया सँ लोकतांत्रिक संवाद के थप सुदृढ़ बनेबाक संगे भाजपा आ रासपा बीचक पार्टीगत संबंध के और गंभीर बनेबा में सहयोग पहुँचबाक बात बताओल भाजपा जनौलक अछि। अध्यक्ष नवीन भाजपा पार्टी की यात्रा विचारधारा संगठनात्मक संरचना तथा जनमुखी राजनीतिक सहभागिता संबंधी दृष्टिकोण संबंध में जानकारी कराने छलथि। भेंटवार्ता क्रम में रासपा प्रतिनिधिमंडल भाजपा सदस्यता प्रक्रिया, उम्मीदवार छनौट प्रणाली तथा निचा तहक कार्यकर्ता पहचान आ सब संग संपर्क विस्तार करबाक संयंत्र संबंध में विशेष अभिरुचि व्यक्त कयने छलथि। एकर संगे अध्यक्ष नवीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अवलंबन कयल गेल विकासमुखी सुशासन मॉडल संबंध में सेहो चर्चा करते विकास सेवा सुशासन तथा कल्याणकारी सेवा प्रवाह भाजपा सरकारक शासन प्रणाली आ जनसंपर्क रणनीति केंद्र में रहल उल्लेख कयने छलथि। रासपा प्रतिनिधिमंडल भाजपा मुख्यालय स्थित मीडिया सेंटर तथा केंद्र पुस्तकालयक सेहो अवलोकन कयने छलथि। भाजपाक विदेश विभाग प्रमुख चौथाईवाले जारी कयल आ जारी कयल विज्ञप्ति अनुसार भेंटवार्ता पश्चात आयोजित दिवाभोज कार्यक्रम में दिल्लीक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित नेतागण सहभागी छलथि। सभापति लामेछाने नेतृत्वक प्रतिनिधिमंडल भाजपा के निमंत्रण में 5 दिन भारत भ्रमण के लेल ओ काल्हि नया दिल्ली प्रस्थान कयलनि। सभापति लामेछाने नेतृत्वक प्रतिनिधिमंडल में हुनक धर्मपत्नी निकिता पौड़ेल, रासपाक सह महामंत्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य विपिन कुमार आचार्य, रासपाक सचिवालय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपक बोहरा आ स्वकीय सचिव प्रदीप आचार्य रहल छथि। प्रतिपक्षी दल सभक अवरोध पश्चात प्रतिनिधि सभाक बैठक जेठ 25 गते धरिक लेल स्थगित भेल अछि। प्रतिनिधि सभाक आजुक बैठक शुरू भेला पर प्रतिपक्षी दलक सांसद लोकनि प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह नेपाल भारतक सीमा हड़पल कहिकऽ देल गेल अभिव्यक्ति सुधार करबाक मांग करैत उठिकऽ विरोध जनौलनि। तकर बाद सभामुख डोल प्रसाद आर्याल संसदक एहिसँ पहिनेक बैठक अनौपचारिक छलफलमे सेहो विपक्षी दलक दिससँ अपन धारणा सभ आबि चुकल, एहिमे अपन धारणा ध्यानाकर्षण सेहो रहल कहैत एहि सभा संचालनमे सहयोग करबाक लेल आग्रह कयलनि। सभामुखक आग्रह पश्चात सेहो विरोधके निरन्तरता देलाक बाद सभामुख आर्याल विपक्षी दलके सांसद सभके बेराबेरी बजबाक लेल समय देलनि। एहि क्रममे नेपाली कांग्रेसक सांसद अभिषेक प्रताप शाह प्रधानमन्त्रीक अभिव्यक्ति त्रुटिपूर्ण आपत्तिजनक रहल, सुधार कयल जेबाक बात बतौलनि। श्रम संस्कृति पार्टीक सांसद हर्षराज राय देशक सीमाना सार्वभौम सत्ता जोगेबाक विषयमे सभ दलके एकमत होयबाक कहैत प्रधानमन्त्री संसदमे उपस्थित भऽ कऽ माफी मांगल जेबाक बात बतौलनि। राष्ट्रीय प्रजातन्त्र पार्टीक सांसद खुशबू ओली प्रधानमन्त्रीक अभिव्यक्ति कूटनीतिक, कानूनी आ राष्ट्र सुरक्षाक दृष्टिसँ अत्यन्त गंभीर प्रकृतिक रहलाक कारणे प्रधानमन्त्रीक दल आ राज्यक निकायसँ एहन अभिव्यक्तिके बचाव प्रयास करलासँ ई दोसर दुर्घटनाके आमन्त्रित कऽ सकबाक बात बतौलनि। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीक सांसद युवराज दुलाल राष्ट्र सुरक्षाक विषय सभ दलक साझा विषय भेलाक कारणे प्रधानमन्त्रीक अभिव्यक्ति सम्बन्धमे प्रधानमन्त्रीक दल राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीक धारणा की अछि सदनके जानकारी करेबाक मांग कयलनि। नेकपा एमालेक सांसद गणेश सिंह ठगुना देशक कार्यकारी प्रमुख सदनमे राखल अभिव्यक्तिके दीर्घकाल धरि राजनीतिक आ कूटनीतिक प्रभाव रहबाक कारणे देशक हितक लेल गलतीके सुधार कऽ आगू बढ़ब नीक बात होयबाक बात बतौलनि। तकर बाद विपक्षी दलक सांसद सभक विरोधक बीच सभामुख डोल प्रसाद आर्याल प्रमुख प्रतिपक्षी दलक नेता भीष्मराज आंग दबे के बजबाक समय देलाक बाद ओ समय नहि देलाक बाद विधेयक प्रमाणीकरण संबंधी राष्ट्रपति कार्यालय सँ प्राप्त पत्र वाचन कऽ बैठक स्थगित कयलनि। प्रतिनिधि सभाक दोसर बैठक 25 जून सोम दिन भिनसर 11 बजे बैसत। राष्ट्रसभाक सांसद लोकनि रवि दिन प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भारतक संग बहुआयामिक सम्बन्ध विपरीत देल गेल अभिव्यक्ति नहि सुधार करबा दै बैठक काज कार्यवाही आगू नहि बढ़ा देबाक रण लेलाक बाद बैठक स्थगित भेल अछि। बैठक शुरू भेला पर आकस्मिक समयमे सांसद लोकनि नेपाल सम्बन्धमे बहुतो ठामे भारतक जमीन हड़पल कहिकऽ नेपालक कार्यकारी प्रमुख संसदके रोस्टरमे ठाढ़ भऽ कऽ बाजब कूटनीतिक मर्यादा विपरीत रहल कहैत तत्काल सदनमे आबिकऽ देशवासीके नाममे माफी मांगल जेबाक बात पर जोर देलनि। राज्यसभाक दोसर बैठक 20 जून बुध दिन दिनक 12:15 बैसत। प्रधान न्यायाधीश डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा न्याय क्षेत्रमे सुशासन कायम करबाक लेल प्रतिबद्ध भऽ कऽ लगबाक बात बतौलनि अछि। संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मंचक पत्रकार सभ आइ हुनका सभ संग कयल भेंटमे न्याय क्षेत्रक सुधार का सुशासन कायम करबाक सबके साथ मिलक आगू बढ़बाक बात बतौलनि अछि। प्रधान न्यायाधीश डॉक्टर शर्मा कहलनि आम नागरिक न्यायपालिका प्रति राखल अपेक्षा स्वच्छ, निष्पक्ष आ यथाशीघ्र गुणस्तरीय प्रभावकारी न्याय संपादन एवं सुशासन संबंधी विषय में कार्ययोजना हम बनौने छी, ओ जानकारी देलनि। आकस्मिक रूप में जिम्मेवारी में आयल छी, ओहि अनुसार काज कऽ कऽ देखायब। न्यायपालिकामे कयल जायवला सुधारक विविध विषय समेट कऽ तैयार कयल 5वां पंचवर्षीय रणनीतिक योजना कार्ययोजनाके सुधारक मुख्य आ मूल आधार बनेबाक कथन छल। भेंटमे मंचक अध्यक्ष कालिका खड़का, पूर्व अध्यक्ष एम बिरही, लीलाधर उपाध्याय, दुर्गा दुलाल, न्याय निष्पक्ष सरल यथाशीघ्र आम जनता न्यायके महसूस होयबासँ न्याय देल जेबाक सहितक विषयमे सुझाव देने छलथि। मध्य प्रदेश सरकारक उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मंत्री कनीष पटेल अपन पहलमे 25 करोड़ धरि स्थिर पूंजी भेल स्वदेशी उद्योगक दर्ता तथा नियमनक अधिकार प्रदेश सरकार अंतर्गत आयल चर्चा करैत एहिसँ प्रदेशक राजस्व रोजगारी दुनू क्षेत्रमे सकारात्मक प्रभाव करबाक बात बतौलनि अछि। मंत्री पटेल 7 वर्षक कार्यान्वयन नहि भऽ सकल विषयके संगे सरकारसँ समन्वयक व्यवहारमे उतरबामे सफल भेल दावी कयलनि। हुनका अनुसार बीतल 3 गते संघीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री गौरी कुमारी यादव संग भेल भेंटघाट पश्चात एहि विषयमे आवश्यक प्रक्रिया आगू बढ़ाओल गेल छल। एहिसँ एहि निर्णयसँ मध्य प्रदेश मात्र नहि भऽ देशक अन्य 6 प्रदेश सेहो प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करबाक बात बतौलनि। उद्योग प्रशासन संबंधी अधिकार प्रदेशमे अयलापर लगानीकर्ताके सहजता हेबाक सङ्गे स्थानीय स्तरमे उद्योगदर्ता नवीकरण नियमन प्रक्रिया प्रभावकारी हेबाक हुनक कथन छल। चालू आर्थिक वर्षक 10 मासमे बिरगंज नाका होइत 7.97 अरब बराबरके दलहन आयात भेल अछि। एहिठामसँ विभिन्न 7 प्रकारक दलहन नेपाल आयात कयल गेल अछि। रेडियो नेपालसँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषामे समाचार समाप्त भेल।
1: नेपाले धुम्रपान व सुर्ती दक्षी सुई पेडो मनो तसिना चङ्गो दु तर ठो लट टोटी फै
2: छि ठो लट टोटी गु खसा थौहे गोप्य ओ तामवाक न्यनिगु सेवा क्विटल्यान्ड 1132 स्वापु तयादिस
3: थो सेवा ज्याकु इले क्याफै
2: वाचाका दिस धुम्रपान ओ सुर्तिया लट तोटी त न्यनिगु सेवा क्विटल्यान्ड 1132
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र टेकु ये।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिपक्षी दलों के विरोध के कारण प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक अवरुद्ध। नेपाल भारत सीमा समस्या कूटनीतिक वार्ता से समाधान ढूंढने का काम सरकार कर रही है। सरकार के प्रवक्ता शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरेल का कथन, नेपाल भारत सीमा के विषय पर किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा स्पष्ट। भारत भ्रमण पर रहे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा सभापति रवि लामिछा ने और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बीच भेंटवार्ता। और रूस ने यूक्रेन पर किया हवाई हमला, कम से कम 16 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रतिपक्षी दलों के विरोध के बाद प्रतिनिधि सभा की बैठक जेठ 25 गत्ते तक के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक शुरू होते ही प्रतिपक्षी दलों के सांसदों ने खड़े होकर विरोध जताते हुए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह द्वारा नेपाल ने भारत की सीमा का उल्लंघन किया है, इस प्रकार दिए गए बयानों को वापस लेने की मांग की। इसके बाद सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने कहा कि संसद के पिछले बैठकों और अनौपचारिक चर्चा में भी विपक्षी की ओर से अपनी बातें रखी जा चुकी हैं और इस पर उनका ध्यान भी गया है, इसलिए सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया गया। सभामुख के आग्रह के बावजूद विरोध जारी रहने पर उन्होंने विपक्षी सांसदों को क्रमशः बोलने का समय दिया। इसके बाद भी विरोध जारी रहने पर सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने प्रमुख विपक्षी दलों के नेता भीष्मराज आदम्बे को बोलने का समय दिया, लेकिन उन्होंने समय नहीं लिया। इसके बाद राष्ट्रपति कार्यालय से प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण संबंधी पत्र पढ़ा गया और बैठक स्थगित कर दी गई। राष्ट्रीय सभा के सांसदों ने रविवार को प्रतिनिधि सभा में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह द्वारा भारत के साथ बहुआयामी संबंधों के विपरीत दिए गए बयानों को जब तक वापस नहीं लिया जाता तब तक सदन की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ने देंगे का अड़ान लिया, जिसके कारण बैठक स्थगित कर दी गई। बैठक शुरू होते ही आकस्मिक समय में सांसदों ने कहा कि नेपाल ने भी कई स्थानों पर भारत की भूमि का अतिक्रमण किया है, जैसे कथन देश के कार्यकारी प्रमुख द्वारा संसद के रोस्ट्रम से कहना कूटनीतिक मर्यादा के विपरीत है। उन्होंने जोर दिया कि प्रधानमंत्री को तुरंत सदन में आकर देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक कल जेठ 20 गते बुधवार दोपहर 12:15 पर होगी। सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने कहा कि नेपाल भारत सीमा समस्या का समाधान कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से खोजने के लिए सरकार काम कर रही है। आज सिंहदरबार में मंत्री परिषद के निर्णय सार्वजनिक करते समय प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह द्वारा समय संसद में दिए गए बयान पर पत्रकारों के एक प्रश्न के जवाब में मंत्री पोखरेल ने कहा कि सीमा विवाद का समाधान बातचीत के जरिए ही होना चाहिए, जिस पर प्रधानमंत्री शाह ने भी जोर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभिन्न समय पर सीमा अध्ययन से जुड़े तंत्रों की रिपोर्टों में यह देखा गया है कि नेपाल का कुछ भूभाग भारत द्वारा उपयोग किया गया है और हो सकता है भारत का कुछ भूभाग नेपाल द्वारा उपयोग किया गया हो सकता है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री ने संसद में केवल यह बात रखी थी कि वे इन निष्कर्षों को देखकर स्वयं आश्चर्यचकित हुए। मंत्री पोखरेल ने बताया कि सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के प्रबंधन को न्यूनीकरण से संबंधित मटेरियल प्रोटेक्शन के कार्यान्वयन संबंधी समझौते को स्वीकृति दी है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि मंत्रिपरिषद की बैठक में सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्री अंजनी कुमार पोखरेल को सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पद पर पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया है। मंत्री पोखरेल ने यह भी बताया कि भूमि समस्या समाधान समिति के अध्यक्ष पद पर बलभद्र बास्तोला तथा सदस्य पद पर अमीर प्रसाद नेउपा ने पद्मिनी सोती और डॉक्टर रेहना श्रेष्ठ की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2082 साल भाद्र 23 और 24 गते के प्रदर्शनों के दौरान हुई घटनाओं के जांच के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट में उल्लिखित सुरक्षा संयंत्र के संबंध में अध्ययन कर सिफारिश देने वाली समिति का कार्यकाल 45 दिन बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद को स्थापित द्विपक्षीय तंत्र के माध्यम से ही हल किया जाएगा। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलन में जानकारी दी कि दोनों देशों के बीच सीमांकन का कार्य लगभग 98% पूरा हो चुका है। नेपाल के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय की ओर से सीमा मुद्दे पर हाल में ही की गई टिप्पणियों के बारे में पूछे गए प्रश्न के जवाब में प्रवक्ता जायसवाल ने कहा कि नेपाल भारत सीमा मामला पूरी तरह द्विपक्षीय विषय है, इसलिए इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं होगी। उन्होंने दोनों देशों के संबंधों में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए कहा कि नेपाल और भारत के बीच जनता के लेकर राजनीतिक दलों तक गहरे और पुराने संबंध है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसीको कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारू गर्नका लागि *14# डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। भारत दौरे पर रहे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा के सभापति रवि लामिछाने और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बीच मुलाकात हुई है। आज नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में हुई इस बैठक में लोकतांत्रिक भागीदारी, सार्वजनिक विमर्श तथा भावी नेतृत्व निर्माण में युवाओं की भूमिका जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए अध्यक्ष नवीन ने साझा सभ्यतागत विरासत, सांस्कृतिक संबंधों तथा लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर आधारित नेपाल भारत के घनिष्ठ और ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भाजपा की यात्रा, विचारधारा, संगठनात्मक संरचना तथा जनकेंद्रित राजनीतिक भागीदारी के दृष्टिकोण के बारे में भी जानकारी दी। इसी प्रकार राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछाने और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच भी आज मुलाकात हुई, जिसमें नेपाल भारत विकास साझेदारी तथा दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि नई दिल्ली में राष्ट्रपा अध्यक्ष लामिछाने और उनके प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करते हुए उन्हें प्रसन्नता हुई। सभापति लामिछाने के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल भाजपा के निमंत्रण पर 5 दिवसीय भारत दौरे के लिए सोमवार को नई दिल्ली पहुंचा था। अदालत के आदेश फैसले को यथाशीघ्र कार्यान्वयन करने के विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता पर संबंधित पक्षों ने जोर दिया है। सर्वोच्च अदालत के फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय द्वारा आज आयोजित चर्चा में वक्ताओं ने कहा कि अदालत ने आदेश और फैसले का तत्काल कार्यान्वयन होना चाहिए। सर्वोच्च अदालत के रजिस्ट्रार मान बहादुर कार्की ने कहा कि फैसले के कार्यान्वयन में संबंधित निकायों को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। निर्देशनालय के महानिदेशक गजेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि अदालत द्वारा फैसला सुनाते ही संबंधित निकायों को पत्राचार किया जाता है, लेकिन उसे तुरंत लागू करने की परंपरा अभी पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुई है। दरबार हत्याकांड को हुए 25 वर्ष पूरा हो गए हैं। वर्ष 2058 साल जेठ 19 गते नारायणहिटी राज दरबार के अंदर ही हुए दरबार हत्याकांड में तत्कालीन राजा वीरेंद्र शाह के परिवार की हत्या कर दी गई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में कुछ यूक्रेन में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 11 लोग निप्रो शहर में और 5 लोग राजधानी कीव में मारे गए हैं। मारे गए लोगों में 2 बच्चे भी शामिल है। यह हमला हाल के महीनों में रूस की ओर से किए गए सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। रात भर चले हवाई हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया, जिसमें कई बच्चों समेत दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। कीव में मलबे के नीचे लोगों के फंसे होने की आशंका के बीच राहत और बचाव दल उन्हें तलाशने में जुटे रहे। मंगलवार तड़के यूक्रेन के ज्यादातर हिस्सों में हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई थी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये हमले यूक्रेन की पिछली कार्रवाइयों के जवाब में किए गए थे। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हमले के सभी लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। रूस ने पिछले हफ्ते चेतावनी दी थी कि वह व्यवस्थित हमले करेगा। रूस ने आरोप लगाया था कि कीव ने पूर्वी यूक्रेन के उसके कब्जे वाले हिस्से में एक छात्रावास पर घातक हमला किया था। यूक्रेन का कहना था कि उसे रूस की एक सैन्य इकाई को निशाना बनाया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने सोमवार रात अपने वीडियो संदेश में चेतावनी दी थी कि बड़ा हमला हो सकता है। मंगलवार सुबह जेलेंस्की ने कहा कि रात भर चले हमले में रूस ने 656 स्ट्राइक ड्रोन और 73 मिसाइलें दागी। इनमें बैलिस्टिक क्रूज और 80 मिसाइलें शामिल थी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिपक्षी दलों के विरोध के कारण प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक अवरुद्ध। नेपाल भारत सीमा समस्या कूटनीतिक वार्ता से समाधान ढूंढने का सरकार काम कर रही है। सरकार के प्रवक्ता शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरेल का कथन, नेपाल भारत सीमा के विषय पर किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं है, भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा स्पष्ट। भारत भ्रमण पर रहे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा सभापति रवि लामिछाने और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बीच भेंटवार्ता, और रूस ने यूक्रेन पर किया हवाई हमला, कम से कम 16 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
4: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
5: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही लिने मजाले चलाउने
6: *14 #" डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
7: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल,
8: नेपालको समावेशी आवाज।